निरंजन, हर पुरुष निरंजन, हर गम अगम अपार, सब त्यावे सब त्यावे तुद जी, हर सच्चे सिर जनहार, सब जी तुम्हारे जी।

बेंती चौपाई अमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपार अमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवार सेवक सिख सबाय करतार मोर अच्छा निज कर दे करे है सब बैरन को आसंगरे है पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हद मुझे उबरे मरण काल का त्रास निभरे उजो सदा हमारे पच्छा श्रीयस्तुजू करे हो रक्षा राख लियो मय राखण हारे साहिब सं सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विशन प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझेओ हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सफर कृपा दिष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्न घट घट के बट बट की जन जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं जेते बदन शिष्ट सब तार है आप अपनी बूझ उचार तुम सब हीते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्वेकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेवना पावत बेदा ताको कृपा हन अनुमानत महामूढ़ कश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भव आप अपनी बुद्ध है जेती मरनत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा ना जाहे पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पुप्पा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारा सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्य है
ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੈਂ ਹਰ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਛਾ ਛਬਾਏ ਸਕੇ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜੁਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਭਾਰਾ। ਜਿਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜਗ ਗੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਦ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਵਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੰਬਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਬਰਾਤਾ। ਕੇਲ ਵਿਗ ਸਕਲ ਦੇਹੇ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਨ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਭਏ ਦਯਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਾਲਾ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨਾ ਤਸੇ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ। ਸੁਨੇਹ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੇਹ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਗੜਨਾ ਤਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ, ਉਹ ਜਾਕੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚਾਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਚਾਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਾ ਸਹਿ ਸਪਣਿਚੈ, ਅਰਧ ਸਹਿ ਸਮੰਤੀ ਨ ਕਹਿਜੈ। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਬ ਵਾਰਾ, ਤੀਰਥ ਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋ ਬਖਿਆਨੇ, ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁਵ ਸੰਵਾਦੇ।

मोहे मान क्रम वचन विचार छपाई मैं नागनिश प्रथम मनाऊ किशन विष्णु कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तनसाओ लिबलागी मोरी पग इनसाओ महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे व्रत परिय चौन चौन शत्रु हमारे मरिय तेग तेग जग में दो चल राखा मुहे और ना दल तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहेब मैं दास तिहारा।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास स्वयं हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनाओ निध आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान दरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन छकिया। देग चलाई तेग वाही दे के अंडट किता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान दरके बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंगणियां ने धर्महे सीस दिते बंद बंद कटवाए। खुपरियां हलवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान दरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान दरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वै चेत्यावन का सदका सर्व सुख वै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देख तेग फतेह बिरत की बैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चमकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा बकाल पुरख वाहिगुरु। ए अकाल पुरख अपने बंदे सदा साई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब दे होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल ददान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो इन माणिया दे मान। नेताणिया दे तां नेवटिया दी ओट सचे पिता वाहिगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी ने बार बिरान बख्श कृपा की आप जी की हजूरी में संध्या वाले सुंदर दीवान साज रहे हैं। साजरे दीवाना दीवाना आरंभता आप जी पित्र बाणी सोदर के पाठ हुए गुरबाणी पाठ करदे होनेक प्रकार दलतियां भुला दी माफी बख्शो। अगह वास्ते सुस्पष्ट बाणी पढ़ने की दात बखनी गुरबाणी का भाव आई संगतं के हिरद्या च बसा के कृतार्थ करना संगत की हाजरी तिल भेटा की दरकर विखे की सेवावान दार प्रवान करनिया परिवारों सुख शांति चढ़ दाता बख्श। संजय सिंह रंधावा अमृत रंधावा जेडन रंधावा कारोबार वादे बरकत सुख शांति लिए अरदास बेनती करते हैं। गुरविंदर सिंह रविंदर को अपने बेटे हर्षदीप सिंह जन्मदिन की खुशी अरदास बेनती कर कृपा करनी परिवार की बेनती अमृतसर प्रवान करनिया। प्यारे खालसा बंदी चढ़ती कला करनी जेलां च बंद कौम दे जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा भाई अमृतपाल सिंह होर प्यारे गुरसिखियां रिहाई चढ़ती कला लई संगत वालों अरदास बेनती है। आप जी दे बख्शिया खजाने विचों कड़ा प्रसाद देख सज के हाजिर दर प्रवान होवे प्रवान है प्रसाद। संगत वरदाउन दी आ गया उस बेनतियां गुरमुख सार प्रवान करदे हैं। मुख सलाई श्री मुख वाक

संगत अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नी वरखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई। सोडी सृष्ट सकल तारण कौ अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई। सो कहो टल गुर सेवी है एहनस सहज सुभाए

भक्त ना छोड़ो, सहजे होए सो होई, आद पुरख एक चलत दिखाया, जह देखा तह सोई, नानक हर की भक्त ना छोड़ो, सहजे होए सो होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप, गुरु की साजी नवाजी, साध संगत वड्डिया भागा वाले होए जे सतगुरु साहब जी की पावन पवित्र चरण सरण विच हाजरियां भर के सतगुरु साहब जी दे इस इलाही दरबार दे विच सतगुरु साहब जी की इलाही बाणी की लड़ीवार विचार 437 अंक दे उत्ते आसा राग दे विच करीमो करीम रहीमो रहीम फहीमो फहीम अजीमो अजीम दानश पजीर मकीनो मकान जमीनो जमा पीरान पीर दस्तगीर मुर्शदुल आलमीन जाहर पीर जगत गुर बाबा आद गुरु धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज साहब जी की मुबारक रसना तो फरमाए हुए इलाही फरमान की बख्शिश होई है जिसका पाठ आप जी ने सरवण किया। गुरु नानक साहब की बख्शिश करने तो पहला भाई गुरदास जी ने बयान किया है भई गलान जगत विच चार वर्ण चार आश्रम उपाय जिस वाहेगुरु अकाल पुरख ने एक ने इको जी सृष्टि पैदा कीती सी उदे हुकम तो उल्ट होके इस संसार नू एक तरफ ने अठ हिस्सों च वंड दिता, चार वाशन वाश वर्ण पैदा करते, चार आश्रम पैदा करते, दस नाम सन्यासियां योगी पारा पंथ चलाए। एक तो सन्यासी सी, सन्यासियों ने अपने च वड्डे छोटे करते, वड्डा जेड़ा सीगा वो होमे का शिकार सी कि मैं वड्डा हां,

गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ

कै सिमरन अन दिन जाग गए। प्रभु कै सिमरन भव ना ब्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभु का सिमरन साध गए संग, सर्वदान नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिध सिद्ध नव निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन होए सो भला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला। से सिमर जिने आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कै सिमरन उदरै मूचा। प्रभु कै सिमरन त्रिसना बुझै, प्रभु कै सिमरन सब कह सुजै। प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माह समाए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु कौ सिमरै से तनवंते, प्रभु कौ सिमरै से पतवंते। प्रभु कौ सिमरै से जन परवान, प्रभु कौ सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभु कौ सिमरै से बेमहताजे, प्रभु कौ सिमरै से सर्व के राजे। प्रभु कौ सिमरै से सुखवासी, प्रभु कौ सिमरै सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जने आव दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभु कौ सिमरै से पार उपकारी, प्रभु कौ सिमरै तन सद बिरहारी। प्रभु कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरै तन सुख बिहावे। प्रभु कौ सिमरै तन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरै तन निर्मल रीता। प्रभु कौ सिमरै तन अंध कनेरे, प्रभु कौ सिमरै बसे हर नेरे। संत कृपा ते अनदन जाक, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कह सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कह सिमरन कबह न झूरे। प्रभु कह सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कह सिमरन सहज समानी। प्रभु कह सिमरन नेह चल आसन, प्रभु कह सिमरन कमल बिंगासन। प्रभु कह सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार।

हर सिमरन नीच चहुकुंठ जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकार, हर सिमरन मह आवनकार। कर कृपा निसया बुझाया नानक गुरमुख, हर सिमरन तन पाया सलोक। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी

रहै चलै। जय मुस्कल होवे तुपारी, हर को नाम खिन माही उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरे। हर को नाम कोड पाव पर हरे, गुरु नाम जपो मन मेरे, नानक पाव सुख कनेरे। सगल सृहट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाह करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत नहीं तरे। अनक माया रंग तेखना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जिह मार्ग इह जात अकेला, तह हर नाम संग हो तु सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आए सिंघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम।

सत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, समझना कै मन बिश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संदन रात, हर हर औखद साध कुमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन कौ मुगत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिवत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जबत कौ परै न भंग।

मिथ्या, काम क्रोध विकराल मिथ्या, राथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या, रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या, त्रोह मोह अभिमान मिथ्या, आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भक्त साध की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण।

प्रसाद गुरुदेव अस्तपदी देह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाए तिस ठाकुर कह राख मन माहे देह प्रसाद सुगंधन तन लावे तिस कव सिमरत परम गत पावे जेह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे ध्याय सदा मन अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पहर सिमरह तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत प्रलुभावे जेह प्रसाद सुख सेज सोई जेह मन आठ पहर ताका जा सिंगा विजय जेह प्रसाद

से कहे जिह प्रसाद सुनहे करनाद जिह प्रसाद पेखे विस्माद जिह प्रसाद बोलहे अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहज बसना जिह प्रसाद हत कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पावे जिह प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिह प्रभ को मूल मनो विसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताको जाप जिह प्रसाद रे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जिह प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिंगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मात उत्तम होए सर्वनिधान प्रभु तेरी माया आप हो कछु न किन्हु लाया जित जित लाभ तित लगे हरनाथ नान किन के कछु ना श्लोक अगमे अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुनमीता नानक बिरवंता साजना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग बुखुजल होद साध संग बल सगली खोद साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब हो तन बेरा साध के संग पाए नाम रतनु साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा सुमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेण साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकत हूं तावे साध संग अस्थित मन पावे साधक संग माया ते पहन साध संग नान प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कह संग महापुनीत साध संग केस नहीं बैर साधक संग न मींगा पैर साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हव ताप साधक संग तरे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हो तावे साध कै संग सदा सुख पावे साध संग बहते गोचर लहे साधु कै संग अजर सहे साधक संग बसे थान ऊचे साधु कै संग महल पहुचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कोल उधारे साध संग साजन मीत कुटाम निस्तारे साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलुहत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग इहा हुआ सुहेला साध संग बिसरु तो हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साधक संग न वृथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नान गुदरे साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाव साध

मन ते ठरे इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस बैस नो सो जिस उपर सो प्रसान बिसन की माया ते होए भिन्न।

दुर्गा संग मानते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की माति उत्तम होवे। भगवंत की टहर करे नित नीत मन तन अर्पे बिसन प्रीत।

कहावे। तैसा हरख तैसा उस सोग सदानंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस बाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा महान तैसा रंग तैसा राजान। जो व्रताय साई जुगत नानक पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर राखे तैसा तिन लाओ। आपे करण करावन जोग प्रभु पावे सोई फिर होग। पसरियो आप होए अंत

अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट हो पजारी कई कोड़ चार बिहारी कई कोड़ पतिवासी कई कोड़ बन भ्रमे उदासी कई कोड़ भेद के स्रोते कई कोड़ तपीसर होते

कब हूँ सर्व की उदरवाल, कब हो बह बर राजा, कब हो पे खारी नीच का साजा, कभू अब कीरत मह आवे, कभू पला पला कहावे, ज्यो प्रभ राखे तेव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे।

मिथ्या। संग दुखी बिगडूप हो जाय, संग दुखी को दुर्गे मिलाय सजाय, संग दुखी सदा सहकाय, संग दुखी ना मरे ना जीवाय, संत के दुखी की पूजन आसा, संत का दुखी उठ चले न आसा, संत के दुख न त्रिसटै कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कितना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार।

बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्ब रोग ते ओह हर जन रहत। अंदर कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख। जिस कहो हर प्रभु मन चेते आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेव कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टा अपने कार्य में आप समाय। सोधत सोधत सोधत सीजा गुर प्रसाद तत् सब बुझया जब देखो तब सब कह मूल नानक सो सूक्ष्म सोई अस्थूल। नह कह जन्मे नह कह सिमरे आपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्टा दृष्टा क्या कारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थाप उथाप अविनाशी नाही।

जन मरे फिर आवे जाए। ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जन आवे तैसा नानक जानना, ना रूप ना ना जाके रंग, ना ना भेख करे एक रंग।

संग, नमो सुखर नाम का संग, नाम रह जो जन त्रिपता ने मन तल नामे नाम सुमानी, उठ बैठ सोत नाम कहो नाम जन के सदकाम, बोलो जास जिह बा रे बोलो जास जिह बा दिन रात, प्रभु अपने जन की नी दात।

रंग राता। ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म के आप नहीं काह भरम, सहस सियाण पलया न जाइये नानक ऐसा गुर। बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पनीत, पर सत चरण गत निर्मर नीत। भेटत संग राम गुर रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आतुम पतियाने ने।

पुरुख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुचित प्राणी अगम गोचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत कहने न पाई अनक भगत बंदन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै सदबनिहारी।

तब शिव सगत कह कित ठाए। जब आपे आप अपनी जो धरे तब कवन निडर कवन कद डरे। अपन चलते आप करने हर नानक ठा गुरु में पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बिनासन।

जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुट है कौन बंधन बाधे अपने आप ही जर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जाओ।

लगत कवकी जय जोत स्वरूपी जो संत समावे तह किसे भूख कम तवे करन क्रावन करने हार नान करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कवन माए बाब मित्र सत भाई जय सर्व कला पे प्रवीन तह वेद देव कहा कुबतीन जब अपने आवे।

सुख पाओ। वेद प्राण सिमृत में देख ससी हर सूरन खेत्र में एक बाणी प्रभति सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले। सर्ब कला कर खेले खेल मोल न पाए गुणे मोल सर्ब ज्योत में जाकी ज्योत धार है स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं हो विसास। संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत सत बहन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब वही

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अलबड त्याह कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार ना।

अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी राम खरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिसर नाहे जे फुरमाए तिब ते पाहे जेता कीता तेता नाउ विण नावै नाही को थाऊ कुदरत कमन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सो खेहे मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख

ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन कवात सहस अठारह कहन कतेबा असलु इक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश नानक बड़ा आखी है आपे जाने आप साला ही साला है इति सुरत न पाईया नदियां अत वाह पवह समंद ना जानिए समंद शाह सुल्तान गृह से ती माल तन कीड़ी तुलना हो बनी जेतस मनो ना विसर अंत ना सिफती कहना अंत अंत ना करने देना अंत अंत ना वेक

अंत कारण केते बिल लाहे ताकि अंत ना पाए जाहे एह अंत ना जाने कोय बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहेब ऊंचा थाउ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ एवड ऊंचा हो वह कोय तिस ऊंचे गौ जाने।

मंदा संतोख शरम बद झोली ध्यान की करे विभूत किंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुक्त ज्ञान दया भंडारन गड़गड़ वाजनाद आप नाथ नाथी सब जाकी

सकल बकल फिरा चतुर सकल मान ही प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव नाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूपनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचय स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहता भूत राख भेष अंगरागना रंग जाके जात पातना नाम गर्भगंजन दुष्ट भंजन मुक्ताय काम आप रूप अमीक आन उस्त एक पुरख अवतूत गर्भगंजन सर्वंजन आद्रुप सूत अंगहीन अपंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्व सर्व कायक सर्व सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वतेन भेख सर्वशास्त्र न जान जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत भागत नेत कोट सीमृत पुराण शास्त्र न आवई वह चेत मदभार शांत तव प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आदान बाहु शाहान शाह राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्रबालान वारंकारंकारान काल अनुभूत अंग अब अभंगत्मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाट्य अनदंड बाट्य चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरेन्द्र नामे अगामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र बाने चतुर चक्र दाने चाचरी शन न सत्र न मित्र न परम परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्रा प्रतिश्य अधिश अदृश्य अकृष भगवती शांत त्व प्रसाद कथते के आ शिज देसा के आ पिज बेसे के आ गंज कर्म के आ भंज भरम के आ पिज लोक के आ दित सुख है के अभूत वर्ण के विभूत करना है के राजंग प्रभा के धर्मंग तुझा है के आ सुख वर्ण के सर्व अपर्ण है के जगतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चतरंग भीहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रहीमे रेहाके के बाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण करिंद के रोजी दहद है के राज करहीम के कर्मंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर मान्य के सर्वतर दान्य के सर्वतर गावना है के सर्वतर भावना है के सर्वतर देशा है के सर्वतर भेषा है के सर्वतर राज है के सर्वतर साज है के सर्वतर दीन नायक के सर्वतर लीन नायक सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देशा है के सर्वतर भेषा है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काज है के सर्वतर राज है के सर्वतर सुख है के सर्वतर भूख है के सर्वतर त्राण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देश है के सर्वतर भेषा है के सर्वतर मान है सदैव प्रधान है के सर्वतर जाप है के सर्वतर थाप है के सर्वतर भान है के सर्वतर मान है के सर्वतर इंद्र है के सर्वतर चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग महीम है के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के सुन वजू है तमाम रसूम है मे सुन सलाम है सली खुद मदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबल परस्त है बिलंदल मकान है जमीनल समान है तमीजल तमाम है रिजवल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खराज है नृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभुत है प्रभुक्त प्रवाह है सुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुप है समस्त पराज है सदा सर्व साज है समस्तल सलाम है सदैव गामे द्रभा स्वरूप अगाध है अनुप है उमंगाद रूपे ना स्वरूप अनंगी अनामे त्रभंगी त्रगामे त्रिवर्गम द्रभादे गंजे अगाते सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है शिज है शूत के नृक प्रणास है प्रथुल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रजुक्त अनुप है नृक् सदा है विभुक्त प्रवाह अनुक स्वरूप प्रजुक्त अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचिंत है सुनंत है अलख्य दिख्य लेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित्य है सुनित है अजात है अजाद है चरबट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावर शांत त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
परमातंग परमाते सदा सर्व साथे अगा सुरपेन्द्रबाद विभूते अनंगी अनामे तरभंगी दरगामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्तरे न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरी कै मितो अमी कै सदैव प्रवाह अजाय है अजा है भगवती शांत प्रसाद के साहर जहूर है के हाजर है जूर है मेसुल सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग के कुशल चिराग के कामल करीम है के राज करहीम है के कर्म करीम के रोजी दहन के राज करीम है के रोजी दहन के राज करहीम है करीमल कमाल के सुनल जमाल है गरीबुल खराजा गरीबुल निवाजा हरीफुल शिकन है हरा सल्फिकन है कलंकंग प्रनास है समसुल निवास है अगंजुल गरीम है रजाय ग्रहीम है समसुल जबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रनास है बहसुल निवास है के सरबुल गवन है मैसुल रवन है तमामुल तमीज है समसुल अजीस है परंग परमीस है समसुल अदीस है अदेसुल अलेख है मैसुल अपेख है जमीन जमा है मे कुल माह है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मितो सुभाष के अजब स्वरूप के मितो विभूत है के मितो प्रसाह के आत्म प्रवाह के चलंग अनंग के मितो अभंग है मधुभार शंध प्रसाद मनमन प्रणाम गुणगन मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मनमन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुभव नास मनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन अभंग कुंभ अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस सपंड जल थल महन दिस व्यंतन भवना तीर्थर्थुरास आजान बाहु एक सदाह वंकाराद गथनीय नाद खलखंड ख्याल गुर प्रकाल घर घर प्रणाम चितचर नाम अंश जगात अजना बात अंश अंजगात अंधरंज बात अंटुट भंडार अंठट अपार अटीठ धर्म अतटीठ कर्म अनभरण आनंदाता महंतर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्काल्य है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है गलकारण है सर्ववारण है तृतके तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्पास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है प्रतेपर है करुणाकर है आजपा जप थपा थप कृता कृत्य मृता मृत मृत्ता मृत करुणा कृत्य कर्ता कृत्य धरने तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य मृता मृत आजपा कृत्य अमृता अमृत है नर नायक है कल गायक है विश्वम्बर है करुणालय है नर नायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रपतापन है जप जापन है अकलंग कृत्य सर्वा कृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म भाष है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार अलंके नमो अलंकलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बाग भंगे भंगी सुरपे अनंगी नामे त्रभंगी त्रकाले अनंगी अगामे एक श्री शांत अजय अलाय अभय अभय अभू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अबख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अगरभंग परभंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निर्गामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुगरमंग प्रणाश सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गरीमे हरियंग करीमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख रहे हो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात गौ ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूंते एक रती बन एक रा एक रती बन एक रत्ती के माते मतंग जरे जरसंग अनुप अतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिव दिन आप शीस न जात बिचारे
ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਾ ਭੁੱਪ ਤੰਦ ਕੋ ਨੰਗ ਇਹ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਰਾਇਆ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੁਪਤ ਕੌਣ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਬਸ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨੁਅੰਤ ਕੁੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਣ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸੇਖੈ ਬੇਦ ਬਰਾਨ ਕਦੇਵ ਗਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤਾਰ ਸਭ ਸਵਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੁਪਤ ਏਕਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਬਾਹ ਸਾਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲਾਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਘ ਨੇ ਨਾ ਹਰੇਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਰ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਲ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਧਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰ ਦੇ ਸਮਿਲਨ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗਡਾਨ ਕੋ ਤੋੜਨਹਾਰ ਸੁਭਾਤਨ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕਰੇ ਇੱਕ ਸੋ ਇੱਕ ਦਵਈਆ ਦਾਨਮ ਦਿਨ ਦੇਵ ਨਿੰਦਨ ਸਾਜਰ ਭੂਤ ਭਿਖ ਭਵਾਨ ਚ ਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲਮੈ ਥਲਮੈ ਪਲ ਹੀ ਪਲਮੈ ਸਭ ਥਾਪ ਥ ਪੈਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਟ ਜੈਤਨ ਪਾਪਨ ਗੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚ ਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਿਰਾਤਮ ਜਾਂ ਤਰੋਕ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟ ਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅਮਰ ਸਾਜ ਬਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਚੀ ਪਤੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਫਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਕੇ ਪਰਾ ਸਹਿਬਗ ਤੇਰ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਨਾ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਪਰਿਓਲੀਏ ਸਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਗਿਓ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕਿਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਗਏ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਜ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਬੈਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜਤ ਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਰਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਿਸ਼ਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਾਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਉ ਬਥਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਬਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹਦ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮੰਦ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਅਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਆਪ ਹਦ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭਾਏ ਘਰ ਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਆ ਸਭੈ ਗੁਆ ਸੰਘਰਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਆਪ ਹਾਦ ਮੁਜੇ ਉਭਰਿਆ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸਨ ਭਰਿਆ ਹੂੰ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਬਛਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ

समझे हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सगल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सत्रन को बल मोह बद कियो, खटखट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत, चिठी ते कुंजर स्थूला, सपर कृपा दुष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक की पीर पशान, घट घट के बट बट की जान, जबत कर करा कर तारा, प्रजा तर तब देह अपार, जब आ कर कर तो कबू तुम मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सिट सब तारे, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद बेदर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेवना पावत भेदा, ताको कृपान अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती, तुमरा लख न जाहे पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सुरूपा, रंग भयो राव कही भूपा, अंड जेर सेत जगिनी, उदभुज खान बहुरच दीनी, कहूं फूल राजा हव बैठा, कहूं सिमट भयो संकरे कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आजुगा स्वरूप स्यंभव, वृक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण गाता, जय स्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे, पुरख जमन बग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दुष्टन जाय ने हरो, ताके ताप तनक मैं हरो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शब सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिंदर नाम तिहारो कहा, दार दुष्ट दोख ते रहा, खड़केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु उबारी, सर्व ठावर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई, कृपा करी हम बर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किल सगल दे को हरता, दुष्ट दुख उनके उषाय करता, श्री सज्ज पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन बांचत फुल पावे सोई, दुखना तुसे ब्यापत कोई अड़ला, सुने गंग जो जाहे सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाहे चतुरता आवई, दुख दर्द भाव निकट न दन्नर के रह, और जो जाकी एक बार चापई को कह, चापई संबत सतरह सहस पणिज, अर्ध सहसुन तीन कहिज, भादर सदी अष्टमी रववारा, तीर सदर ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कहु आंग तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने, सिमृत शास्त्र भेद सबै, बहु भेद कहे अमेक ना जाने, श्री असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहे सब तो

गुरप्रसाद नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया भवजल विचों काढ के मुक्त पदार्थ माहे समाया जन्म मरण भौ कटिया संसार रोग वियोग मिटाया संसार इहो संसार है जन्म मरण विच दुख सवाया जम दंड सिरू ना उतरे साकत दुर्जन जन्म गवाया चरण गहे गुरुदेव के चरण गहे गुरुदेव के सत शब्द दे मुक्त कराया नाम दान इसनान दृढ़ पाए भगत गुर पुरब कराया हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी सरनागत पिया

0: संत साजन पै सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप जिया दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे पाठ पांच बाणिया दे नेतनेम आसा की वार दे कीर्तन होए। उपरंत आप जिया वालों बख्शन मुख वाग दी कथा विचार गुरमत विचार शिव पौड़िया आनंद साहब दा जाप होया है। कृपा करनी जी समुचिया सेवावां निभाउंदिआं होया पुल चुक दी खेमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनिया दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वादे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी आप जीआं दे भाणे विच रहण सुखां नाल बतीत होई आया दिन आप दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे। अरदास बेनती है जी सच्चे पातशाह जीओ दर करदे प्रीतवान भाई अमनप्रीत सिंह बीबी गुरसिमरन कौर सच्चे पातशाह जी समूह परिवार वालों

जब और सच जिगार सच है भी सच नानक खुशी भी सच एक ओ अंकार सतनाम करता निर्भव निर्वय अकाल अजुनी सैब गुरप्रसाद जब और सच जिगार सच है भी सच नानक खुशी भी सच धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सगल द्वार को शाड़क गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाजिया गोविंदास तुहार कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखला

जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए, हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर साहिब निदावे ताए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावे ताए, सब थाई ऐसा।

0: निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना,
1: तुम करो पलाह
0: हम पलो न जाने,
1: तुम सदा
0: सदा दयाला, तुम करो पला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई वृक्ष विदाते, तुम राखो अपने वाला, तुम सुखदाई वृक्ष विदाते, तुम राखो अपने वाला, तुम निधान

0: लख खुशियां कणी जाए मुख न मोड़, टाडी दर प्रमंगणा दर कदे न छो, टाडी दर प्रमंगणा दर कदे न छो। नानक मंथन चाओ एहो नित प्रभु कोलो, नानक मंथन चाओ एहो नित प्रभु कोलो। मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहिब, निरंकार तू सदा ऊच भगवान, बेनती अपनी भक्ति लाए
1: मांगो दान
0: ठाकुर नाम।
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव, तू ही निरंकार तू सदा
0: सलामत निरंकार,
1: तू ठाकुर
0: ऊच भगवान,
1: नानक की बेन अपनी भक्ति लाए मांगो दान ठाकुर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम, भुल चुक माफ, तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनवाद। नानक नाम चढ़दी कला तेरे
2: पाने सुरबत,
1: वाहिगुरु जी का खालसा,
2: वाहिगुरु खालसा,
1: जो बोले सो निहाल,
2: सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, सतनाम।

गुर कै शब्द पछाता अचिंत काम करे प्रभ तिनकी जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवार नहारा उना की रीस करे सो बिगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौंक मुए बिल लाई आवह जावह ठौर न पावह दुख में दुख समाई गुरमुख हुए सु अमृत पीवै सहजे सात समाई बिन सतगुर सेवे जन्म न छूडै जी अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाने बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जस बाणी पज छूटै गुर सरनाई जिन हर मन वस्या से दर साचे सचियारा उना दी सुभा जुग जुग हुई कोई न मेटन हारा नानक तिनकै सत बलिहार जिन हर

नेह राज करेगा खालसा की रह न कोई ख्वार हुई सब मिलेंगे बची शरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़ी सोतरी पार।